आओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण ना जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद बिन सिद्धी किनै ना पाईया, कर्म मिलै नाही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह किसै क्या चारा, नानक।

हारु हारु हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुरु संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस

काहिरी मन चित वह उद्दम जा आहर हर जीव प्रया शैल पत्थर मह जंतु पाए ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सुतरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभ

तिस पाछै बचरे छरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया।

हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दाता, हर त्यावह संतोह जी।

तेरे चोज विडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना, जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना, हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी, से मुक्त भये, जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी, जिन निरभउ जिन हर निरभउ।

प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई परापत मान।

संगत भज के वल नाम सरंजाम लाग भव जल तरन कै जन्म मृता जात रंग माया कह रहा जप तप सं

शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं। कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु। आप हाथ दै मुहे बचावहु, सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा।

रह प्यासा, तुम्हें चाड़ कोई अवर ना त्याहूं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री आस तुझ जू करे हो रच्छा, राख लिहो मुहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तुमासा, जवन

सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब आकर्क करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देहे धर सबहू। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम।

न पावत विदा। ताकौ कृपाहन हनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक है रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेर जसेत जकीनी उत्पुज कान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे। पुरख जवन पग

काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहे सब काला। दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु, ताके ताप तनक मह हरिहु। रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन

जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक।

तरस पया मेहरामत हुई, सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। तरस पया मेहरामत हुई, सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। पौड़ी तिथै तू समरथ, जिथै कोई नाहि, उथै तेरी रख अग्नि उदर माही। सुन कै जम के दूत, नाए तेरे छड़ जाहि, पाओ जल बिखम सुगाहु, गुर सबदी पार पाहि, जिन कौ लगी।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

मैं सुख तने कोई न जाने तुम रायांत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समागिरी।

कीमत नहीं है। सो इन्हीं सेवा प्रवान हुईया पुलना चुका दिखी मग्नि अवगले प्रोग्राम सरुण क्रिय सत्कार योग ज्ञानी गुरमेल सिंह जी कनेडा टोरंटो वाले उन्होंने पासों चल रही तंत्र साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की गुरबाणी दिलड़ी वार विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरुण क्रिय दासर फतेह प्रवान प्रभु जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: मेरा कुछ भी नहीं है, शरीर मेरा नहीं, पराए ने महाराज दे बख्शिया होया शरीर है, धन महाराज का दिता ओ कोल ही दे दे, दस वस्तु ले पछ पावे, ये जे जिद कर लवेगा तभी बात नहीं बानी, दस वस्तु ले पछ पावे, एक वस्त कारण बे खोट गवावे, एक पी ना दे दस पीहर ले तो मूड़ा कहो कहां करे, जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा। एक बार फिर अमृत वचन पढ़ो ज्ञानी जी।
1: प्राय अमान क्यों रखिया दिते ही सुख होए,
0: जिस वेले सत करके दे देवेगा पहाड़ा मान लवेगा, जो परमात्मा ने दिता जे लै भी लिया दे पहाड़े अंदर आवेगा तो महाराज जी कहिंदे ने सुख दी प्राप्ति होवेगी। एक बात होर भी है, सुख तेरा दिता लई है, सुख ओदा ही दिता मिलता है, जोर दे नाल सुख नहीं मिलता, सुख एक थां ते नहीं खलोंदा, बंदा कहिंदा जी सुख मिल गया सुख मिल गया, सुख एक थां ते टिकदा ही नहीं है, जिस वेले उस जगह ते पहुंचदा है सुख उदो चार कर्मा अगाह चला जाता है, उत्थे पहुंचदा है उहदे तो होर अगाह चला जाता है, सुख उदो मिलता है जदों अंदर दा टका बन जाता है, सतगुरु सब कुछ ही तेरा है।

0: सतगुरु जी कहिंदे सतगुरु जी तो बिना सोझ ही नहीं है, ज्ञान नहीं है। घर विच वस्तु सारी है पर पता नहीं कित्थे पई है। जिवें घर विच कोई पदार्थ पए होण तां आपां नूं याद भुल जे है घर विच ही है, बंदा इधरों टोलदा इधरों टोलदा इधरों टोलदा है, तिवें बंदा है घर विच है टोलदा लभदा उहनूं बाहरों फिरदा है। गुरु ज्ञान करावेगा भी घर विच है, बाहरों किवें लभदा है। तां महाराज ने तां ही इह बोल कहे सी, काहे रे बन खोजण जाई सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई पोहप मत ज्यों बास बसत है मुक्कर माहे जैसे शाही तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जन हो यो गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीन मिट न भ्रमो की
1: काई।
0: काई। सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत धरन माहे आकाश पायाल सर्ब लोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन परबत है पार ब्रह्म जैसी आग्या तैसा कर्म पौन पानी बै संतर मै सब दे विच मौजूद है पर नजर नहीं आउंदा। तेवे गरीब निवास जी कहिंदे सब कुछ घर विच है पर पातशाह जी कहिंदे ने जग भुखा संसार दे लोक भुखू भुखू करदे ने भी कित्थों मिले लभदे ने पदार्थां नूं। तेवे महाराज कहिंदे घर विच परमात्मा है हिरदे विच रब वसदा भीखा भूखा को नहीं सब की गंठड़ी लाल पर गंठड़ी खोल ना जानता इन बिद पया कंगार। कहिंदे जिवें गंढ दित्ती होवे गंढ विच लाल जवार पए ने पर गंढ नहीं खुलदी उन्हां नूं पता ही नहीं लगदा। तेवें हिरदे रूपी गंढ बज्जी हुई है उहदे विच नाम रूपी रतन है जिन्नू महाराज कहिंदे ने ना

बोलो जी, बोलना जी। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह, श्री भगवत जी सहाय, वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याय, जे लिखे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावै, ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु दाता गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दर्ज का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। निमाणिया दे मान, निताणिया दे तान, नियोटियां दी ओट, गुरु गरीब निवास चे पातशाह। तन तन तन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है। महाराज जी आप जी दे पाणी अंदर चार पहर दिन सुखां दा बतीत होया। अमृत वेले तो आप जिया ने तख्तां ते खुले दर्शन दार दे के निहाल कीता। रात दे दीवाना दी संपूर्णता आप जी दी सेवा संभाल, सोलह साहब जी दी बाणी दा जाप आप जी दे सेवकां वल्लों कीता गया। बेअंत संगतां तिल फुल भेटावां लैके हाजरियां भरनियां ने। महाराज जी सब दियां दिलां दियां इच्छां पूरियां करनियां, सेवादार हाजर ने रहण आई है सुखमई बतीत कराउणी। आग्या बख्शिश करो, सचखंड पलंग ते विराजमान होवो। अमृत वेले फिर दर्शन बख्शना जी, सुख होवे नाम चितावे नानक नाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

आओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम न सै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत काश बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभ कै सिमरन भाउ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्ब निधान ना।

ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਨਾਉ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੁਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਧ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਤਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਬੇਮਹਤਾਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਬੇਨਾਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਬਸਹਿ ਹਰ ਨੇਰੇ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੂ ਨਾ ਝੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੂਨਕਾਰ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ, ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਭੇਦ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਰਣ ਕੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੋਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜੈ ਮਹਾਪਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ, ਜਹਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੂਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਹੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ, ਲਾਖ ਕਰੂਰੀ ਬੰਧਨ ਪਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ, ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨਾ ਬੁਝਾਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਗਾਵੈ, ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ, ਤਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ, ਅਨੇਕ ਬਿਘਨ ਜੈ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ, ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਮ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ, ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਮਨ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਹੀ ਨ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾ ਸੰਗ ਤੋਸਾ, ਜਿਹੇ ਪੈਂਡੈ ਮਹਾ ਅੰਦ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜੀਆਰਾ, ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨ ਸਿਆਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ, ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਤਹਿ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ, ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਜ ਅਕਰਖੈ, ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਜਨ ਕੋਟ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧਕ ਮਾਤ,
हर जन कह हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन कीनो दान, मन तन रंग रते रंग एक, नानक जन कह बिरत बबेक, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वडयाई, हर कै नाम जन सोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन कौ आप प्रभ दीना, हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग केते तरे, पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुरत सब नसै, संत का संग वड भागी पाईए, संत की सेवा नाम ते आईए, नाम तुल कश अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए, सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्ये फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पूर्ण दान होमे बहु रत्ना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड प्रथमी फिरे चर जीवे, महा उदास तपीसर थीवे, अग्न माहे होमत प्राण, कनक असव है वर भूम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन, निमुख निमुख कर शरीर कटावे, ताओ पी होमे मैल न जावे, हर के नाम संसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै, सोच करे दिन स अर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही कौ बहु साधना करे, मन ते कबहू न बिखिया टरै, जाल तो वै बहु देह अनीत, सुध कहाँ होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच, बहुत से अणप जम का पौ व्यापै, अनेक जतन कर कृष्ण ना त्रापै, पेख अनेक अग्न नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै, छूटस नाही ऊब पयाल, मुहे व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांग है, साध जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे, जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए होमे शोरे, जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरनी परै, जिस जन कौ प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिय सब ते ऊंचा, जाका मन होए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पाप पून नहीं लेपा, निरतन कौ तन तेरो नाऊ, निथावे कौ नाऊ तेरा थाउ, निमाने कौ प्रभ तेरो मान, सगल कटा कौ दे बहुदान, करन करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपने गात मित जानो, आपे आपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर न जान सुकोए, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जाप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम किरिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्दम में उद्दम भला, हर का नाम जप हो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी,
सगल थान के ओ उत्तम थान, नानक जिह घट वसै हर नाम सलोक, निर्गुण यार ए आने सो प्रभ सदा समाल, जिन किया तिस चीत राखो नानक निभही नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत पराने, कवन मूलते कवन दृष्टाने, जिन तू साज सवार सिगारिया, गर्भ अगन में जिने उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साख सैन, मुख्य प्याऊ बैठ कौ दैन, एहो निर्गुण गुण कशु न बूझै, बख्श लेहो तव नानक सीजै, जिह प्रसाद धर ऊपर सुख बसै, सोत प्रात मीत बनता संग हसै, जिह प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमुला, जिह प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना, तिसै त्याग अवर संग रचना, ऐसे दोख मूड अंध ते आपे, नानक काड लेहो प्रभ आपे, आद अंत जो रखन हार, तिस्यों प्रीत न करै गवार, जाकी सेवा नव निध पावै, तास्यों मूड़ा मन नहीं लावै, जो ठाकुर साध सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावै दरगह मान, तिसै बिसारै मुगद अजान, सदा सदा इहो भूलन हार, नानक राखन हार अपार, रतन त्याग कौडी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सुहा स्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै धोए, गर थब प्रीत पसम संग होए, अंधकूप में पतत बिकराल, नानक काढ लेहो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर भेक अंतर मल माया, शपश नाहे कश करे छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान इसनान, अंतर व्यापै लोभ सुवान, अंतर अगन बाहर तन सुहा, गल पाथर कैसे तरह अथा, जाकै अंतर बसै प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गै लिहो ऊड़ निभावै, कहा बुझारत बुझे डोरा, निस कहिए तौ समझे पूरा, कहा बिसन पद गावै गूंग, जतन करै तौ पी सूर भंग, कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं हो तो ऊहा उस गवन, करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै, संग सहाई सो आवै न चीत, जो बैराई तास्यों प्रीत, बलुआ के ग्रह पीतर बसै, आनंद तेल माया रंग रसै, दृढ़ कर मनै मनै प्रतीत, काल ना आवै मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लेहु अपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पहे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत, सगल समग्री तुमरा सूत्र तहारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दा सदा कुर्बानी सलोक, देन हार प्रभ छोड़ कै लाग है आन सुआए, नानक कहू न सी जाई बिन नावै पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछ पावै, एक वस्तु कारण भी खोट गवावै, एक पी न दे दस पी हैर ले, तौ मूड़ा कहो कहा करे, जिस ठाकुर सिउ नाही चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा, जाकै मन लागा प्रभ मीठा, सर्ब सुख ताहु मन बूठा, जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्ब थोक नानक तिन पाया, अगनत साहो अपनी दे रास, खात पीत बरतै आनंद उलास, अपनी अमान कश बहुर साहुले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बहुरस का विश्वास न होवै, जिसकी वस्त तिसे आज्ञा राखै, प्रभ की आज्ञा मन है माथा है, उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल, अनेक पांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिरख की छाया सिउ रंग लावै, ऊ बिनसै ऊ मन पछुतावै, जो दिसै सो चालन हार, लपट रहयो सह अंध अंधार, बटाऊ सिउ जो लावै नेह, ताको हाथ न आवै केहे, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई,
मिथ्या तान तन कुटंब सबाया, मिथ्या होमै ममता माया, मिथ्या राज जूबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता, मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, आस थिर भगत साध की सरन, नानक जाप जाप जीवै हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै, मिथ्या हस्त पर दर्ब कौ हिरै, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद, मिथ्या चरण पर बेकार कौ तहवै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बासलेत बिकारा बिन बूझे, मिथ्या सब पहे सफल देह, नानक हर हर नाम लय, बिरथी साकत की यार जा, सच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताक दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के निरारथ दाम, तन तन ते जन जिह घट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ, रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुख हो गंड लावत, जानन हर प्रभु प्रवीन, बाहर भेख न काहू पीन, अवर उपदेसै आप न करै, आवत जावत जन्मै मरै, जिसका अंतर बसै निरंकार, तिस की सीख तरै संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जान चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपे मानै, आपे आप आप करतन बेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा, उपाव सियानप सगल ती रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत, जिस पावै तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहया समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरि सलोक, काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए, अहमेव नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी, जिह प्रसाद शति अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे, जिह प्रसाद सुगंधत तन लावै, तिस को सिमरत परम गत पावै, जिह प्रसाद बस है सुख मंदर, तिसे त्याए सदा मन अंदर, जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरहो तिस रसना, जिह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याइय त्यावन जोग, जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसे त्याग कत अवर लुभावै, जे प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पहर ताका जस गावी जय, जे प्रसाद तुझ सब को मन, मुख ताको जस रसन बखानै, जे प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जपत दरगै मान पावै, नानक पथ सेती घर जावै, जे प्रसाद आरोग कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही, जिह प्रसाद तेरा ओला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत, जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै, जिह प्रसाद तुझ को न पहुचै, मन सास सास सिमरहो प्रभ ऊचे, जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताकि भगत करे, जिह प्रसाद अभूखन पहरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय, जिह प्रसाद असव हस्त असवारी, मान तेस प्रभ कौ कबहु ना बिसारी, जिह प्रसाद बाग मिलख तना राख पुरोई, प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई, उठत बैठत साध तिसै त्याई, तिसहै त्याए जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रखै, जिह प्रसाद कर है पुन बहु दान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान, जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ कौ साध सा चितारी, जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप, जिह प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, जिह प्रसाद तेरी पतर है गुर प्रसाद, नानक जस कहै, जिह प्रसाद सुनै करण नाद, जिह प्रसाद पेखै बिस्माद, जिह प्रसाद बोलै अमृत रसना, जिह प्रसाद सुख सहजे बसना, जिह प्रसाद हस्त कर चलै, जिह प्रसाद संपूर्ण फलै, जिह प्रसाद परम गत पावै, जिह प्रसाद सुख सहज समावै, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागहो, जिह प्रसाद तुम प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार,
जिहि प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड़ तू ताकौ जाप जिहि प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जिहि प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू तास्यों राच जिहि प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाउ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्ब निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक इन कह कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सु ज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत निबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की सुबा प्रभ माहे समानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा पर फुलै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहु तावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध कै संग न बीगा पैर साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहु तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बस अगोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध कै संग बसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुँचै साध कै संग विरड़ै सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब निसतारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग सोभा सुर बेवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कश काल दर्शन भेटत होत निहाल साध कै संग कलूखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सोहेला साध संग बिशरत हर मेला जो इच्छै सोई फल पावै साध कै संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साधरी दुबसै नानक उधरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाओ साध कै संग न मनते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संग गत भई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जानै जेता सुनै तेता बख्याना है साध की उपमा ते हो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊच ते ऊची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एकस बिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ सोख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यों वसुधा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का इह गुनाऊ नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे धर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा
ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कै होय सो भला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा साध जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अधि आखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक। उर धारै जो अंतर नाम सर्व मैं भिखै भगवान। निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक ओ अपारस सगल निस्तारै। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मैं प्रीत निरंजन दर्स। परत्रै रूप न भिखै नेत्र साध की टहल संत संग हेत। कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद भिख्या पर हरै मन की बाशना मन ते तरै। इंद्री जित पंच दुख ते रहत नानक कूट मधे को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत होवै नेह कर्म तिस बैष्णो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा ने बाचै केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरह नाम जपावै नानक ओ बैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै। सो पंडित जो मन प्रबुदै राम नाम आत्म मैं सोदै। राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन न आवै। वेद पुराण सिमरत बूजै मूल सूखम मैं जानै असथूल। चहु वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहुवर नाम जपै को नाम। जो जो जपै तिस की गत होए साध संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उर तारै पाश प्रेत मुगत पाथर को तारै। सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कित न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म।
जिसके मन पार ब्रह्म का निवास हो, तिसका नाम सत रामदास हो, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, कैसा हरक कैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं बियोग, तैसा सुवरण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत नानक, ओ पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राख तैसा तिन नाओ, आपे करण करावण जोग, प्रभ भावै सोई फुन होग, पसरे आप होए अनत तरंग, लखी न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगाश, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा

ಬಹುಭಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ. ಅಷ್ಟಪದಿ ಕೈಕೂಟ ಹೋಯ ಪೂಜಾರಿ, ಕೈಕೂಟ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಿ, ಕೈಕೂಟ ಭಯ ತೀರ್ಥವಾಸಿ, ಕೈಕೋಟ ಬಾನ ಭ್ರಮೆ ಉದಾಸಿ, ಕೈಕೋಟ ಭೇದ ಕೇ ಸ್ರೋತೆ, ಕೈಕೋಟ ತಪೀಸರ ಹೋತೆ, ಕೈಕೋಟ ಆತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ತಾರೆ, ಕೈಕೋಟ ಕಬ ಕಾ ವಿಚಾರ, ಕೈಕೋಟ ನವ ತನ ನಾಮ ತೇ ಆವೆ, ನಾನಕ ಕರ್ತೇ ಕಾ ಅಂತ ನ ಪಾವೆ, ಕೈಕೋಟ ಭಯ ಅಭಿಮಾನಿ, ಕೈಕೋಟ ಆಂಧ ಅಗಿಯಾನಿ, ಕೈಕೋಟ ಕಿರ್ಪನ ಕಠೋರ, ಕೈಕೋಟ ಅಭೇಗೋ ಆತ್ಮ ನಿಕೋರ, ಕೈಕೋಟ ಪರದರ್ಭ ಕಹಿರ, ಕೈಕೋಟ ಪರದೂಖ ನ ಕರ, ಕೈಕೋಟ ಮಾಯಾ ಸರಮಾಹೇ, ಕೈಕೋಟ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಮಾಹೇ, ಜಿತ ಜಿತ ಲಾಭೋ ತಿತ ತಿತ ಲಗ್ನ, ನಾನಕ ಕರ್ತೇ ಕೀ ಜಾನೇ ಕರ್ತಾ ರಚನಾ, ಕೈಕೋಟ ಸಿದ್ಧ ಜತಿ ಜೋಗೀ, ಕೈಕೋಟ ರಾಜೇ ರಾಸ ಭೋಗೀ, ಕೈಕೋಟ ಪಂಖೀ ಸರ್ಪ ಉಪಾಯ, ಕೈಕೋಟ ಪಾಥರ ಬಿರಖ ನಿಪ ಜಾಯ, ಕೈಕೋಟ ಪವನ ಪಾಣಿ ಬೈಸಂತ್ರ, ಕೈಕೋಟ ದೇಶ ಭೂಮಂಡಲ, ಕೈಕೋಟ ಸಸಿಯರ ಸೂರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಕೈಕೋಟ ದೇವದಾನವ ಇಂದ್ರ ಸಿರಿ ಶತ್ರ, ಸಗಲ ಸಮಗ್ರಿ ಅಪನೆ ಸೂತ ತಾರೆ, ನಾನಕ ಜಿಸ ಜಿಸ ಭಾವೈ ತಿಸ ತಿಸ ನಿಸ ತಾರೆ, ಕೈಕೋಟ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಸಾತಕ, ಕೈಕೋಟ ಭೇದ ಪುರಾಣ ಸಿಮೃತ ಅರಸಾಸ್ತ, ಕೈಕೋಟ ಕಿಯೇ ರತನ ಸುಮಂದ, ಕೈಕೋಟ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರ ಜಂತ, ಕೈಕೋಟ ಕಿಯೇ ಚರ ಜೀವೆ, ಕೈಕೋಟ ಗಿರಿ ಮೇರ ಸುವರ್ಣ ಥೀವೆ, ಕೈಕೋಟ ಜಖ್ಯ ಕಿನ್ನರ ಪಿಸಾಚ, ಕೈಕೋಟ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಸೂಕರ ಮೃಗಾಚ, ಸಬ ತೇ ನಿರೈ ಸಬ ಹೂ ತೇ ದೂರ, ನಾನಕ ಆಪ ಅಲಿಪತ ರಹ್ಯಾ ಭರಪೂರ, ಕೈಕೋಟ ಪಾತಾಲ ಕೇ ವಾಸಿ, ಕೈಕೋಟ ನರ್ಕ ಸುರ್ಗ ನಿವಾಸಿ, ಕೈಕೋಟ ಜನಮ ಜೀವೈ ಮರೈ, ಕೈಕೋಟ ಬಹುಜೋನಿ ಫಿರೈ, ಕೈಕೋಟ ಬೈಠತ ಹಿ ಖಾಹೇ, ಕೈಕೋಟ ಕಾಲೈ ಥಕ ಪಾಯ, ಕೈಕೋಟ ಕಿಯೇ ತನವಂತ, ಕೈಕೋಟ ಮಾಯಾ ಮೈ ಚಿಂತ, ಜಯ ಜಯ ಪಾಣಾ ತಹ ತಹ ರಾಖೇ, ನಾನಕ ಸಭ ಕೇಶ ಪ್ರಭ ಕೈ ಹಾಥೇ, ಕೈಕೋಟ ಭಯ ಬೈರಾಗೀ, ರಾಮ ನಾಮ ಸಂಗ ತಿನ ಲಿವ ಲಾಗೀ, ಕೈಕೋಟ ಪ್ರಭ ಕೌ ಖೋಜಂತೇ, ಆತ್ಮ ಮೈ ಪಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಹಂತೇ, ಕೈಕೋಟ ದರ್ಶನ ಪ್ರಭ ಪ್ಯಾಸ, ತಿನ್ ಕೋ ಮಿಲ್ಯೋ ಪ್ರಭ ಅಭಿನಾಶ, ಕೈಕೋಟ ಮಂಗೈ ಸತಸಂಗ, ಪಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ತಿನ ಲಾಗಾ ರಂಗ, ಜಿನ ಕೋ ಹೋಯ ಆಪ ಸೋ ಪ್ರಸನ್ನ, ನಾನಕ ತೇ ಜನ ಸದಾ ತನ ತನ, ಕೈಕೋಟ ಖಾಣಿ ಅರಖಾಂಡ, ಕೈಕೋಟ ಆಕಾಶ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಕೈಕೋಟ ಹೋಯ ಅವತಾರ, ಕೈ ಜುಗತ ಕೀನೋ ಬಿಸತಾರ, ಕೈ ಬಾರ ಪಸರೇ ಉಪಸಾರ, ಸದಾ ಸದಾ ಏಕ ಏಕಂಕಾರ, ಕೈಕೋಟ ಕೀನೇ ಬಹು ಪಾಂತ, ಪ್ರಭ ತೇ ಹೋಯ ಪ್ರಭ ಮಾಹೇ ಸಮಾತ, ತಾಕಾಂತ ನ ಜಾನೇ ಕೋಯ, ಆಪೇ ಆಪ ನಾನಕ ಪ್ರಭ ಸೋಯ, ಕೈಕೋಟ ಪಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇ ದಾಸ, ತಿನ್ ಹೋವತ ಆತ್ಮ ಪ್ರಗಾಸ, ಕೈಕೋಟ ತಾತ ಕೇ ಬೇತೇ ಸದಾ ನಿಹಾರ ಏಕೋ ನೇತ್ರೇ, ಕೈಕೋಟ ನಾಮ ರಸ ಪೀವೈ ಅಮರ ಪೈ ಸದ ಸದ ಹಿ ಜೀವೈ, ಕೈಕೋಟ ನಾಮ ಗುಣ ಗಾವೈ, ಆತ್ಮ ರಸ ಸುಖ ಸಹಜ ಸಮಾವೈ, ಆಪನೇ ಜನ ಕೋ ಸಾಸ ಸಾಸ ಸಮಾರೇ, ನಾನಕ ಹೋಯ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೇ ಪ್ಯಾರೇ, ಸಲೋಕ ಕರಣ ಕಾರಣ ಪ್ರಭ ಏಕ ಹೈ, ದೂಸರ ನಾಹಿ ಕೋಯೇ, ನಾನಕ ತಿಸ ಬಲಹಾರಣ, ಜಲ ಥಲ ಮಹಿ ಅಲ ಸೋಯೇ, ಅಷ್ಟಪದಿ ಕರಣ ಕ್ರಾವಣ ಕರಣೈ ಜೋಗ, ಜ್ಯೋ ತಿಸ ಭಾವೈ ಸೋಯಿ ಹೋಗ, ಖಿನ ಮೈ ಥಾಪೋ ಥಾಪನ ಹಾರಾ, ಅಂತ ನಹಿ ಕಿಶ ಪಾರಾವಾರ, ಹುಕ್ಮೇ ತಾರ ಅತಾರ ರಹಾವೈ, ಹುಕ್ಮೇ ಉಪಜೈ ಹುಕ್ಮ ಸಮಾವೈ, ಹುಕ್ಮೇ ಊಚ ನೀಚ ಬ್ಯವಹಾರ, ಹುಕ್ಮೇ ಅನಕ ರಂಗ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ ಕರ ದೇಖೈ ಅಪನೇ ವಡಿಯಾಈ, ನಾನಕ ಸಭ ಮೈ ರಯಾ ಸಮಾಯಿ, ಪ್ರಭ ಭಾವೈ ಮನುಖ ಗತ ಪಾವೈ, ಪ್ರಭ ಭಾವೈ ತ ಪಾಸರ ತರಾವೈ, ಪ್ರಭ ಭಾವೈ ಭಿನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಾಖೈ, ಪ್ರಭ ಭಾವೈ ತ ಹರ ಗುಣ ಪಾಖೈ, ಪ್ರಭ ಭಾವೈ ತ ಪತತ ಉಧಾರೈ, ಆಪ ಕರೈ ಆಪನ ಬಿಚಾರೈ, ದುಹಾ ಸರ್ಯಾ ಕಾ ಆಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಖೇಲೈ ಬಿಗಸೈ ಅಂತರ ಜಾಮಿ, ಜೋ ಭಾವೈ ಸೋ ಕಾರ ಕರಾವೈ, ನಾನಕ ದೃಷ್ಟಿ ಅವರ ನಾವೈ, ಕಹು ಮನುಖ ತೇ ಕ್ಯಾ ಹೋಯಾವೈ, ಜ್ಯೋ ತಿಸ ಭಾವೈ ಸೋಯಿ ಕರಾವೈ, ಇಸ ಕೈ ಹಾಥ ಹೋಯ ತ ಸಭ ಕೇ ಶಲೇ, ಜ್ಯೋ ತಿಸ ಭಾವೈ ಸೋಯಿ ಕರೇ, ಅನಜಾನತ ಭಿಖ್ಯಾ ಮೈ ರಚೈ, ಜೇ ಜಾನತ ಆಪನ ಆಪ ಬಚೈ, ಭರ್ಮೇ ಭೂಲಾ ದಯ ದಿಸ ತಹವೈ, ನಿಮುಖ ಮಾಹೀ ಚಾರ ಕುಂಟ ಫಿರಿಯಾವೈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਖਿਨ ਮੈ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਜਾ ਕਉ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ, ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਨ ਜਗਦੀਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਬਡਾਈ, ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੂਰਾ ਜੀਉ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਉ, ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ, ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰ ਕਰੰਗ ਹਸੈ, ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਬਿਵਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ, ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਬਹੂ ਮਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ, ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ,
कबहू होए बह बड़ राजा कबहू पिखारी निज का साजा कबहू आप कीरत में आवे कबहू भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे गुरु प्रसाद नानक सच कहे कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावे ध्यान कबहू तट तीर्थ इसनान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक ज्योन परमै परमिया नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे ज्यों प्रभ भावै तिवै न चावै ज्यो तिस भावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोय कबहू साध संगत ए पावै उस अस्थान ते बाहुर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस अस्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सतगुरु बाण सलोक सुखी बसै मसकीनिया आपने वार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुआन जो जाने मैं जोवनवंत सो होवत बिष्टाका जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे बहु जोन परमावे धन घूम का जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त तो आगे सुख पावे धनवंता होए कर गरबावे तृण समान काश संग न जावे बहु लस्कर मान को ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन में होए जाए पसमंत तिसे न बदय आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुरप्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हौ तारे शर्म पावे सगले बिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरक फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म निंद्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते काश होए तब इस कहो सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब धारै को बैरी मीत तब लग निहचल नाही जीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हौ छूटै सहस खटे लख को उठ तावै तृपत न आवै माया पाछै पावै अनक भोग बिख्या के अनक भोग बिख्या के करै नह तृपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए ज्यो के शुकीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग बूझै देखै करै बबेक आपे एक आपे अनेक मरै न बिन सै आवै न जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेसै समझै आप आपे रचया सब कै साथ आप कीनो आपन बिस्थार सब काश उसका उकरने हार उस ते भिन कहो किश होए थान थनंतर एक सोए आपुने चले तो आप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कूट मधे किने बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरवन बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आरजा घटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा तेहीन संत के हते कौ रखे न कोय संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत के दुखन ते मुख भवै संतन के दुखन काग ज्यों लवै संतन के दुखन सर्प ज्योन पाए संत कै दुखन त्रिगत ज्योन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब को शलै
संत कह दुखन तेज सब जाए, संत कह दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का थाऊ को नाहे, नानक संत भावे ता ओए पी गत पाहे। संत का निंदक महा तताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख मह दुख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को ना ही ठाऊ, नानक संत भावे ता लय मिलाए। संत का दुखी अध बीच ते टूटे, संत का दुखी कते काज ना पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान भरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर तिथो था, ज्यो सास बिना मृत कीलो था, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत भावे तां लए उबार। संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पावक ईदन त्रपै, संत का दुखी छुटे अकेला, जो बुआड़ तेल खेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस भावे सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए, संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत काय दुख ना त्रष्ट है कोई, जैसा भावे तैसा कोई होए, पया किरत ना मेटा कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करहो दिन रात, तिसे त्यावो सास की रास, सब का शुवरत है तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना केल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से। सलोक तज हो सियानत सुरजनाओ, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखाओ, नानक दुख परम पहो जाए। अष्टपदी मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न कृष्णा लागे आए, मारे राख है एको आप, मानुख कह कृष्णा ही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम राख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले हे जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलाओ मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार, मान तन मुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, एत ओत कियो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन्हें निरंजन जानिया, गुरप्रसाद आपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कह तो, सर्ब रोग ते हर जन रह तो, अन दिन कीरतन केवल बख्यान, गृहस्थ मैं सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तात सब बूजिया, जब देखाओ तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई असथूल, नह किश जन्मै नह किश मरै, आपन चले तो आप ही करै, आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल मैं आप,
अनेक जुगत राचो थाप उथाप अविनाशी नाही किश खंड धारण धार रहे ब्रह्मांड अलख अभेव पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो बावंत सगल संसार उधरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उधारण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मिल लय कृपाल गुरु का शब्द जप भय निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करे बड भागै नाम जपत पावै बिसराम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किश करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सहज सुभाए होवै सो होए करणै हार पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे ते समाहे समाए कोहे सुख निधान उन्हु बन आए आपस को आप दिनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जन नहार जाकै सिमरन उधरी है नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कशु न होए जे सौ प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरा किश काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जोत सगल घाट सो है धनवंता होए क्या को गर्भ है जां सब किश तिसका दिया दरब है अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहतावै जे को होए बहे दातार तिस दिन हर जाने गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हौ रोग नानक सो जन सदा आरोग ज्यों मंत्र को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मनै अस थमन ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लागत निस तरै ज्यों अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास ज्यों महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावै तिन संतन की बाशो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिल लाइए पूर्व लिखे का लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसै चितार जो काशु करै सोई सुख मान भूला काहे फिरया जान कौन बस्त आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पात सेती घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया तज अभिमान लेहु मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाद खेप संत संग चाल अवर त्याग बिखिया जंजाल धन धन कहे सब कोय मुख उजल हर दरगह सोए एहो वापार विरला वापार नानक ताकै सद बलहार है चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध कहो अपना जियो साध की धूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुरबान साध सेवा वडभागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनेक बिघन ते साधु राखै हर गुण गाए अमृत रस चाखै ओट गही संतै दर आया सर्व सुख नानक तेह पाया मृतक कौ जीवा लनहार भूखे कौ देवत आधार सर्वन धान जा की दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे सब किश तिसका उकरण जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल ए करणी कर कृपा जिस कौ नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाकै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनियै ते हो लोए जाकै हृदय एको होए सच करणे सच ताकी रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वरतै साचा पसार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग किश त्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न तिसै बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी अभिनाशी प्रभ मन मै राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिसते परे नाही किश कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सो जाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल पखसंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कह मन एहो अनराओ
मन सा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। आनंद रूप मंगल सद जा कह, सर्व थोक सुनिए करता कह। राज मैं राज जोग मैं जोगी, तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी। त्याए त्याए भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। जा की लीला की मित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम त्या वैसे। एहो गुण मैं जाको परमाए, जन्म मरै फिर आवै जाए। ऊच नीच तिसके अस्थान, जैसा जन आवै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाति रंग, नाना भेप करे एक रंग। नाना भेद कीनो विस्थार, प्रभ अविनाशी एकंकार। नाना चलित करे खिन माहे, पूर रहयो पूर्ण सब ठाए। नाना भेद कर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवन नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम कै संग उधरे सुन श्रवण। कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मै सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी। सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत। सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जाके हृदय प्रवेश। सत निरत बूझै जे कोय, नाम जपत ताकी गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपने मित गत। जिसकी श्रेष्ठ सो करने हार, अवर न बूझ करत विचार। करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष भावै सो वरतिया। बिस मन बिसम भय बिसमाद, जिन बूझया तिसाया स्वाद। प्रभ कै रंग राज जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख काटन हार, जाकै संग तरै संसार। जन का सेवक सोवट भागी, जन कै संग एक लिव लागी। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। सलोक आद सच जुगाद सच, है पे सच नानक होसी पे सच। अष्टपदी चरण सत, सत प्रसनहार। पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखण हार। नाम सत सत ध्यावन हार, आप सत सत सब तारी। आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ बकता। सुरत सत सत जस सुनता, बुजन हार को सत सब होए। नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जिन मान्या। करण करावन तिन मूल पछान्या, जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया। तत ज्ञान तिस मन प्रगट आया, भय ते निरपौ होए बसाना। जिस ते उपजिया तिस माहे समाना। बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताकाओ भिन न कहना जाए। बूझै बूझन हार बबेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग। सेवक कौ प्रभ पालन हारा, सेवक की राखै निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ तारै, नानक सो सेवक सा सा सुमारै। आपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवकी सर पर रखै। अपने दास को दे वडाई।

जन कै संग चित आवै नाउ, आप मुक्त मुक्त करै संसार। नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेखो, सास सास सिमरहु गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद, आस अनित त्याग हो त्रंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करहो, साध संग अगन सागर तरहो, हर तन के पर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भाज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो, चित चित वहो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन किरपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है आधार। उत्तम सलोक साध के बचन, अमुलीक लाल एहे रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप तरै लोकै निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाकै मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहत वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै, प्रगटे गोपाल महा तुकै माथे, नानक उधरे तिन कै साथे, सरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पए सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न पए गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव, आल जंजाल बिकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निबही खेप हमारी, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सोहो तिने धान, सर्ब इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर न होवै आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए, खेम सांत रिद नावनिद, बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध, विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान, चार पदार्थ कमल प्रकाश, सब कै मध सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख पहने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग मै ताकि गत होए, गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटाए, संत कृपा ते जम ते छुटाए, जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए, जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ देह तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिन से पै परम।

राम सुख मनि सब ते ऊच पाकी सोबा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनि सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कथना कथी न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, दे दा दे लै दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मे हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पौ अपार, आख है मंग है।

आप निरंजन सोई जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविय गुणी निदान। गाविय सुनिय मन रखिय पाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई। गुर ईसर गुर गोरख बरमा, गुर पार्वती माई। जे हो जाना या का नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, तीरथ नावा जे तिस पावा। विण पाने के नाए करी, जीती सिर ठोपाई। वेखा विण करमा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे कु गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई।

तीर्त मल नाओ, सब गुण तेरे मैं ना ही कोए, विन गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आत बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन से रुत्ती माहु कवन, जित हुआ आकार, वेल न पाइया पंडती, जे होवै लेख पुराण, वक्त न पायो का दिया, जे लिखन ले कुरान, थित वार न जोगी जाने, रुत माहु न कोई, जा करता सिर ठीको साजे, आपे जाने सोई, क्यों करे आका क्यों सालाही, क्यों वरनी क्यों जाना, नानक आखन सब को आखै, एक दू एक सियाणा, वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का हुवै, नानक जे को आपौ जाने, अगै गया न सोहै, पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओड़ कोड़ कपाल थके, वेद कहनिक वात, सहस अठारह कहन कतिपा, असलू एक धात, लिखा हुए ता लिखी है, लिखे हुए विनाश, नानक वड्डा आखी है, आपे जाने आप, सालाही इति सुरत न पाइया, नदिया अतै वाहा, पवह समुंद न जानिए, समुंद सा सुल्तान, गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुल न होवनी, जे तिस मनहु न विसरह, अंत न सिफती कह नयंत, अंत न करने दे नयंत, अंत न वेखण सुनन अंत, अंत न जापै क्या मनमंत, अंत न जापै कीता आकारु, अंत न जापै पारावारु, अंत कारण किते बिल लाहे, ताके अंत न पाए जाहे, एहो अंत न जाने कोए, बहुता कही है बहुता हुए, वड्डा साहिब उच्चा थाओ, चे उपर उच्चा नाव, ए वड़ उच्चा हुवै कोए, तिस उच्चे को जाने सोए, जे वड़ाप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया न जाए, वड्डा दाता तिल न तमाए, केते मंगह जूदा पार, केते आगणत नहीं विचार, केते खप टुटह विकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूरख खाही खाहे, केते अदूप भूख सदमार, ए पेदा तेरी दातार, बंद कलासी पा

गावन जतीश संतोखी, गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मनमोहन, सुरगा मच प्याले, गावन रत्नो पाए तेरे, अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा, गावह खानी चारे, गावह

तारीख पंडारीक लाए दीवान, जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फरमान, ओह वेखै उन्हां नदर न आवै, बहुता

ज्ञान विचार, जो न जुगती छुट्ट है संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती ताप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवार, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उठै पाए, नान गया जापै जाए, धर्म खंड का इहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते काण महेश, किते बरमे काढ़त घड़ी है रूप रंग के वेश, कितियां कर्म भूमि मेर, केते केते धूप देश, किते इंद चंद सूर, किते किते मंडल देश, किते सिद्ध बुद्धनाथ, किते किते देवी वेश, किते देव दान मुन, किते किते रतन समुंद, कितियां खाणी, कितियां बाणी, किते पात नरिंद, कितियां सुरती सेव, किते नानक अंतनांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाटत घड़िए बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथिया न जाए, जे को कह पिछे पछताए, तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोत महाबल सूर, तिन महराम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना होए मरे न ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो, करह आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै तंत अनंत, तिथै लो लो आकार, जिव जे हुकम तिवै तिवकार, विखै विखसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत बहारा धीर सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, भौख लागन तपताओ, भांडा भमृत तटाल, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, जिनको नदर

निदान है, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अभूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपांज हैं, अचूज हैं, अचांज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंत हैं, अबंध हैं, निर्भूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अला हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निरसीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अपूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, असूक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अवाह हैं, अगा हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिरेक हैं, भुजंग प्रयाचंद, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे निरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद वादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ति विभूते, कलंकंग विना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणि, नमो अस्त्रमाणि, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रे देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नानु, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्टे इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचिदानंद सर्वं परनासी, अनुपे अरूपे समस्त निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता, अदो उर्द अर्धं अगंग ओग हर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अछेदी अभेदी अनामंग कामं, समस्तोपराजी समस्तस्ततामं, तेरा जोर चाचरी चंद, जले हैं, थले हैं, अपीत हैं, अभे हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, अदेश हैं, अपेश हैं, भुजंग प्रिया चंद, अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमस्त्वं निर्णाथे, नमस्त्वं परमाते, नमस्त्वं गंजे, नमस्त्वं पंजे, नमस्त्वं काले, नमस्त्वं पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राजराजे, नमो साज साजे।

प्रसाद अमृत कर्मी अमृत धर्मी अकल जोगी अचल भोगी अचल राजी अटल साजी अकल धर्मंग अलग करमंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग पुक्ता सर्वंग जूता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंत्व प्रसाद आदि रूपन आदि मूर्त जौनपुर कपार सर्व मंत्र मान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर तत्र विराज ही अवतूत रूप प्रसाद नाम ठाम न जात जाक रूप रंग नारे एकाद पुरख उदार मूर्त जौन आदर्श एक देश और न पेश जाक रूप रेख न राग जतर तत्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग नाम काम बहीन पेखत ताम हूँ नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सुदय मान तताहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिरे ते भेव न जाने जे भेद और कतेब रूप रंग न जात पासु जाने के जे तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र वक्र फिरे चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिकै जग जापी जे जाप आ देवनाद मूर्त प्यो सबै जीता परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत भूत लख अभेश अंग राग न रंग जाकै जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दाय काम आप रूप अमीक अनुष्ट तेक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंग हीन भंग नात्मिक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेक सर्व शास्त्र न जानहि जे रूप रंग अरेक परम वेद पुराण जाकै नित भाखत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वै वचित मद पार चंत्व प्रसाद गुणगण उदार महिमा पार असन भंग उपमा नंग अनुभव प्रकाश निश्चिन सा जान बाहु साहन साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान कालान भूतंग अभा भंग गत मित अपार गुणगण उदार मुनगण प्रणाम निरपय निकाम अद्युत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य धर्म सर्व परनाढ्य अंडन वाढ्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उतारे अपारे हरियं करियं निर्नामे कामे कुजंग प्रया चंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हरता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाली चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी चंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अतिशय अदृश्य कृषय भगवती चंद्व प्रसाद कथते क्या चिज देश है क्या भिज पेश है क्या गंज कर्म है क्या भंज भरम है क्या भिज लुक है क्या दित सुख है के अवतूत वर्ण है के विभूत करण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण है के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के वर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आदर देव है के अपीव है के चित्रंग बहीन है के कह अधीन है के रुझी रजा कह रही मैं रिहा कह कि पाक व्यव है के गैबुल गैब है के फुल गुना है के साहन सा है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राज करीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है
केसर

है कि सर्वत्र ताप है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वंक में कि परमंक में कि अकल आलम है कि साहिब कलाम है कि हुसन अल वजू है तमामुल रुजू है हम सलाम है सलीकत मुदाम है गरीबुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रिया यकीन है अनेकल तरंग है अपीत है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल किराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेधी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव लकाम है निर्वात स्वरूप है आगाध है अनूप है अंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिभंगी त्रिकामी त्रिवर्गं त्रिवादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वान राग है त्रिभुग स्वरूप है चिजय है छूत है कि नर प्रणास है प्रतुअल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है बेपुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी चंद अपांग है अनंग

चाहते हैं, बंद हैं, अभगत हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निश्चिंत हैं, सुनित हैं, अलिख हैं, अधिक हैं, अलेख हैं, अपेक हैं, अटा हैं, अगा हैं, संभ हैं, अगम हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित्य हैं, सुनित्य हैं, आजाद हैं, आजाद हैं, चिर प्रशंत्व प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हरता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग त्राणं, सर्वंग कर्मं, सर्वंग धर्मं, सर्वंग जुगता, सर्वंग मुक्ता, रसावल चंत्व प्रसाद, नमो नर्क नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सूत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निसाकं श्री कै मितो अमी कै सदैवं प्रभाह अजय अजाह भगवती छन्त्व प्रसाद इजाहर जरूर है कि हाजिर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसन चराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी देहंद है कि राजक रहिंद है करीमुल कुमाल है कि हुसन जमाल है गनीबुल किराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकन प्रनास है समस्तुल निवास है गंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकं प्रनास है बहसुल निवास है कि सर्वल गवन है हमी सलरवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है अधिसुल अलेख है हमीसुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मद पार छंत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगन मुदा मर भर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल तल मुदाम अंचिज अंग वासन अपंग उपमा पार गत मित उदार जल तल अमंड दिस विश अपंड जल तल महंत दिस विश बेअंत अनुपवनाश त्रितर तुरा सा जान बाहु एक सुदाहु ओंकार आदि कथनी अनाथ खलखंड के आल गुरबर काल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जगात अजिज न बात अंश अंज गात अनरंज बात अन टुट पंडार अन डट पारा डीठ धर्मत ठीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतु प्रसाद करुणालय है अर काल्य है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से पर के पर है करुणा कर है अजपा जप है थपा थप है कृता कृत्य अमृतामृत है अमृतामृत है करुणा कृत है कृता कृत्य धरणी त्रित है मृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृतामृत है जबा कृत है अमृतामृत है निर्णायक है कलकायक है विश्वम पर है कुरुणालय है निर्पनायक है सर्पायक है पवभंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म भस है जस के जस है भुजंग प्रछंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रास संताम संसांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वास आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू नास अकाश अगंज अपंज अलख अपख
अकाल दयाल लेख भेख नाम काम गाह नाथ प्रमाते अजोनी अमोनी नरागि नरंगे न रूपे न लिखे करमंग परम गंजे लिखे भुजंग प्रया चंद नमस्तुल प्रणामी समस्तुल प्रनासी अगंजुल नामी समस्तुल निवासी निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्त निवासी अजाय विपूते गजाय विघ्नी में हरियं करियं करिमुल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते तुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा

बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहत तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाक समगरी तुम रह सूत्र तारी, तुम ते हो ऐसो

समाधि वेद समाधि समाधि भेद विस्माधि रूप विस्माधि रंग विस्माधि नागे फिरे जंग विस्माधि पौन विस्माधि पानी विस्माधि अग्नि के गए बिटानी विस्माधि धरती विस्माधि।

तू करता करना मैं नाही जाहो करी न हो बलहारी कुदरत बसिया तेरे अंत न जा।

गुरु सवारी संगत जी। सारे माई भाई गुरसिख दूर नेड़े प्यार सहत आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग पतत पावन दया सिंध, कृपा निध गुरु गरीब निवाज। सब ते ऊच जा का दरबार, सदा सदा ताको जोहार।

महाराज की करिए उन्हां दे गुण की कहिए, जिवें व्यंग दे बोल ने भी चंगा काम कीता सोहना कीता माड़ा कोई करके आवे तेवे महाराज कहिंदे महाराज नूं कहिंदे महाराज की दसीए मूंह दे दे बड़े मिठे ने पर गुरु तो सखणे ने इस करके पूरियां गुरां तो बलहार जा कच्चड़िया स्यो तोड़ कच्चिया ना तोड़ दे पक्के गुरु दे नाल प्रीति पाला कचहो कंचन भयो शब्द गुर सरवण सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो लोह होयो लाल नदर सतगुर जद तहर पाहण मानक कर ज्ञान गुर कहो बीचार काठो श्रीखण सतगुर कियो दुख दरिद्र तनके गए सतगुर चरण जन परसिया से पास प्रेत सोर नर भये इस करके गुरु तो बलहार जाइए गुर परमेश्वर करने हार सगल सृष्ट का दे आधार गुरु सारी सृष्टि का आसरा ताई ता महाराज कहिंदे ने जे सौ चंदा उगवाह सूरज चढ़े हजार एते चानन हुंदिया गौर बिन कोर अंधार बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देव ते किए करत न लागी वार देरी नहीं लगी जदों गुरु ने कृपा कीती है ता गुरु अर्जन देव महाराज जी दे अमृत बचन आज प्राप्त होए ने।

तिना भुख सब जावी, हर का मार्ग आखी है, कहो कित बिद जाइए। हर हर तेरा नाम है, हर खर्च ले जाइए। जिन गुरमुख हर आराध्या, से साहा वडदाने। ओ सतगुरु।

निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औध बिहात है फूटे घट ज्यों पानी रहाओ हर गुण काहे न गावही मूरख अज्ञाना झूठे लालच लाग कै नह मरन पछाना अजहू कछ बिगड़ो नहीं जो प्रभ गुण गावै कहो नानक ते भजन ते निरपै पद पावै तिलंग महला नौवा जाग लिहू रे मना जाग लिहू कह गाफल सोया जो तन उप

रहाओ। संपत रथ धन राज स्यों अत नेहु लगायो। काल फास जब गल परी सब भयो परायो। जान बूझ कै बावरे तै काज बिगारियो। पाप करत सुख च्यो नहीं नह गर्भ निवारियो। जिह बिद गुरु उपदेसिया सो सुन रे भाई नानक।

रसना नाम जपो तब मथिय इन विद अमृत पावहु मन संपट जित सत सर नावण पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जी सेवे इन बिद साहिब रबत रहै।

नानक कह सहेली हो सहु करा प्यारा हम सह केरियां दासियां साचा खसम हमारा सूही महला पहला।

जोग न तीर्थ नाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, सतगुर भेटै ता सहसा टूटै, तावत वर्ज रहाई है, नीचर चरै सहज धुन लागै, कर ही परचा पाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग

हम तो वह पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रसगे, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम विच्यो सिर गुर के। जन नानक नाम पर्यो गुर चेला, गुर राखो ला।

मधुर शब्दी और अस्थिर सेव सुख समगा मेरे मन भज राम नाम अत पिरगा मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगै सिर वेच लियो मुल महगा रहाओ नरपत राजे रंग रसमाण है बिन नावे पकड़ खड़े सब कलगा धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पछुताने हाथ फलगा हर राख राख जन किरम तुम्हारे शरनागत पुरख प्रतपलगा शरनागत पुरख प्रतपलगा दर्शन संत देहु सुख पावे प्रभ लोच पूर जन तुमगा तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी मोकौद की जय दान हर निमगा जन नानक नाम

सब लाथे किल विक पंग, हर दीना दीन दयाल प्रभु, सत संगत मिलो संग, मिल संगत हर

ज्ञानी गुरबिन भगत न हुई, कोरै रंग कदे न चढ़ै, जे लोचै सब कोई रहाओ, जब तप संजम वर्त करे पूजा, मनमुख रोग न जाई, अंतर रोग महा

मुख अड़सठ तीर्थ तिल तिलक कढ़ाए, जितने भगत हर सेवका। मुख अड़सठ तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए, जन नानक तिन कौ अन दिन परसे। जे कृपा करे हर राय।

तुर भगत जना को बख्शया, हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख हुवै सो उनकी रीस करे, किस हालत पलत।

एक नगर है, पिंड है, जीव आत्मा इसका सरदार है, चौधरी है, मुखी है। और इस पिंड विच, इस नगर विच इकली जीव आत्मा नहीं बस, होर लोग भी हैं। वखरे वखरे हैं रस्ते, अखां, कान, नासका, ये जड़े इंद्रिय हैं ना, ये आवाजा मार मार के लेंदे हैं। ते पिंड दे चौधरी नूं तंग कर, कबीर साहब बाबा आपना बसुएगा, मैं इस पिंड विच नहीं रहना चाहता क्योंकि कोई मेरे कहने नहीं मानता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वखरे वखरे अंदर रस्ते हैं, मेरा कोई कहना नहीं मानता। तो मेरी चौधरी की जिम्मेवारी है, मैंने पता है मेरे को लेखा जोखा मंगया जाना, हिसाब किताब लिखिया जा रहा है। हे अकाल पुरख, हे अंतरजामी,

एक बेनती कर दें आप जी के चरणों च। कलगी वाले धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिथे देख देखते धनी हैं, सरबन सुदानी हैं, खालसा पंथ के सृजनहार हैं, उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बहुत वड्डे संगीतकार भी हैं। सत संत बोलो श्री दास ने आरंभता की सी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बचना बिन करतार न किरतम मानो राग कल्याण पातशाही दसवें। जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 31 राग सिंगल हैं, 31 राग ही मिश्रित हैं, 62 राग, एडा वड्डा खजाना। उत्थे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 177 राग गाए ने, 177। सात संगत बोलो श्री इदी परचोल 1990 दे विच शुरू होई सी और इन्हों 2 साल लगे सन लुधियाने विच, दास उदे विच शामिल सी। ये बहुत वड्डी देन है धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, बहुत वड्डी देन है सात संगत। जे असी उस देन नु संभाल सकीए शायद साडे पुरब मनाए सफल हो जान, इत्थे आउणा सफल हो जाए। जिस मार्ग ते जिस रस्ते ते सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सानू तोरना चाहिया उस रस्ते ते किते असी भी तुर पईए ते शायद इस जीवन विच इस लाइफ विच ऐसी क्रांति आ जाए। क्रांति ए उही क्रांति ते सी सतगुरु बेहर करन बख्शिश करन। सरबत दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद।

गुरु प्यारी साध संगत जी, जिवें कि साडे वीर जी फरमा रहे सी, राग सतगुरां दी सानू बरकत है, इनायत है। ये मौसीकी, ये संगीत सतगुरां ने सानू दिता है ताकि शब्द साडे मन विच वस सके, असी कीर्तन कर सकीए, कीर्ति कर सकीए। कलयुग में है कीर्तन प्रधाना, हर कीर्त कलयुग पद उत्तम। सो उस भाव नूं मुख रख के जदों इस बाणी दा अध्ययन करदे आं ते बाहर सृष्टि नूं वेख के, कायनात नूं वेख के, बसंत नूं वेख के, उसका प्रफुल्लन वेख के, मन विच उस कादर प्रति, उस खालक प्रति आभार दा, थैंक्स दा भाव जिहड़े ने व्यक्त हुंदे ने। असीं थैंक्स करदे आं कि कैसी नेचर है। पर सतगुरु ने सानू इको उपदेश दिता है कि उस कादर की कुदरत वेख के असी अपनी होमे का त्याग करना है। असी तो तुच्छ मात्र और वक् वक् शब्दों राही सानू समझा रहे ने। ये सारे महापुरख इको बोली बोलते ने, गुरमत की बोली, इको विचार। और भगत रविदास जी दा शब्द है, तुकाए गर्भ है बावली, जैसे भादो कुंभराज तू तिस्ते खरी उतावली। तेरी जिंदगी, तेरी होंद, पिंडा वाले नूं पता है कि रूड़ियां दे विच छोटियां छोटियां भादरों दे महीने च खुंभा उग पैंदियां ने, जिन्हां दी लाइफ बड़ी शॉर्ट हुंदी है। तो इस तरह ही साडे जीवन दे विच भी साडी जिहड़ी होंद है वो बड़ी ना मात्र है, बड़ी तुच्छ जिही है। तो फिर गर्भ क्यों करिए, आओ इस शब्द नाल जुड़िए। और सतगुरु फिर जो फरमा रहे ने, होमें दे त्याग प्रति, देख फूल फूले अहं त्याग त्यागे, चरण कमल पागे, तुम मिलो प्रभ सुपागे। आओ भगत रविदास जी नूं याद करदे हां इस शब्द नाल जुड़िए।

नामदेव जी महाराष्ट्र दे सी और उन्होंने जिन्ने तुसीं शब्द देखते हो बीठुला का प्रयोग परमात्मा लिए कीता और नाल समुंदर सागर क्योंकि वो नाल तुसीं देखते हो समुंदर है सो कैसी सिमली दे भगत वरतदे ने और किस तरह उस वाहिगुरु दे नाल अपना स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन करते हैं।

मैं बेनती करता हाँ बीबी सिमरत कौर जी स्टेज पे आ जाए दो गागां दा गाएं।